ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard?

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
2: चाचा केड़ा चाचा
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
4: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
3: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
4: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: जुतियां सस्ता सोना नहीं मिलिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नक्का नतीला है सिर्फ दो पौंड ना। कान सलाने ना, एक पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274498935।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है? कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 488935।

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
2: चाचा केड़ा चाचा
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274 488935

0: something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday, the 23rd of October, at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs, and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking, and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences, and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां ने जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

को खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है अल्लाह।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: उम्मीद ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कुल्लो नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: नहीं मिलने लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

अच्छाई हो, प्यार मोहब्बत हो, तो ये मोस्ट वेलकम, आप ऑन एयर आ सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आज जुमा की शाम है और 17 जुलाई 2026। आप भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया, चाहे आप अंग्रेज़ी के अंदर बात करना चाहें या उर्दू के अंदर, ये मोस्ट वेलकम, आप ऑन एयर आ सकते हैं और इसके अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। टॉपिक चल रही थी पिछले सेशन से कि लुकिंग आफ्टर द एल्डरली ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, हमारी मुआशरत के अंदर जो बुजुर्ग तरीन लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं या जो बीमार हैं, उनका देखभाल करना, ये हमारी कम्युनिटी का, हमारी माशरे का एक हिस्सा है, हमारी माशरे का की जिम्मेदारी है। लुकिंग आफ्टर द एल्डरी ऑफ द कम्युनिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, द फैमिली, द एक्सटेंडेड फैमिली। एंड आई स्पोक ऑन दिस quite some length in the previous session, पिछले सेशन के अंदर बड़े तफसील से मैंने इसके ऊपर बातचीत की थी और कुछ मिसालें भी मैंने बयान की थी कि जिसके अंदर जो बड़े बूढ़े हैं उनको होम्स के अंदर भेज दिया गया, उनके औलाद, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे उनको काम मिल गया हो, चाहे दूसरे इलाकों के अंदर उनको कोई मजदूरी या कोई बिजनेस मिली हुई हो, और उसकी वजह से अब वो इतने मशगूल हैं कि इन बूढ़े वालिदैन के पास रह नहीं सकते या उनको अपने यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, वहाँ वो तब्दील नहीं कर सकते। और हालत फिर ये होती है कि बड़े बूढ़े जो हैं अब वो तने तनहा, चाहे बूढ़ा मर्द हो या औरत हो, तने तनहा अपने घर के अंदर रहते रहते एक वक्त आता है फिर इंसान के ऊपर कमज़ोरी की वजह से बीमारियां आती हैं, इंसान की बाकी ज़रूरियात हैं, तो फिर उनको एल्डरली केयर होम के अंदर भेज दिया जाता है और उसका नाम ही एल्डरली केयर होम, उनके लिए होम है, उनकी देखभाल, जो उनकी ख़ास ज़रूरियात हैं उनकी देखभाल, खाना पीना, उनके सोना, उनको आराम के साथ रखना। तो अब सवाल ये है कि आया ये आगे जो ट्रेंड चली आ रही है, दिस ट्रेंड दैट वी आर नोटिसिंग, व्हिच इज दैट एज सून एज द यंगस्टर्स दे ग्रो ओल्ड टू मिडिल एज मेन एंड वुमेन एंड देयर पेरेंट्स हैव बिकम वल्नरेबल, जो वालिदैन हैं ये बड़े बूढ़े हैं, अब वो कमज़ोर तरीन सूरत के अंदर पहुंच गए, 80 साल के, 90 साल के, बाद इससे पहले भी, बाद इसके बाद भी, तो अब बजाय उनका देखभाल करने के, उनकी खैर खबर लेने के, उनकी ज़रूरियात पूरा करने के, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, द एल्डरली हु हैव बिकम वीक, मे बी इल, but if nothing else, due to their elderliness and due to their age, naturally the body and the mind, it both weakens. Unka jism bhi kamzor hota jata hai aur unka jo dimag hai wo bhi kamzor hota jata hai. Quran Kareem ne iska ek naksha khincha hai. चुनाचे फरमाया يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا, इस इंसान को ارض للعمر, रजील, बहुत कमज़ोर उम्र तक इसको पहुंचाया जाता है, कमज़ोरी तक, कमज़ोर हद तक इसको पहुंचाया जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि उनकी

ذہنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اب ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا, علم کے باوجود پوری زندگی وہ چیزیں یاد کرتے رہے, سیکھتے رہے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر لیا ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے خود دیکھا کہ بعض لوگ اس عمر کے اس حصے تک پہنچے, آج کل لوگ اس کو ڈمنشا بھی کہتے ہیں, مختلف الزائمز بھی کہتے ہیں, مختلف بیماریاں, تو دماغی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اب وہ اپنے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی پہچان نہیں سکتے. ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور باپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, اس نے کہا میں فلاں ہوں. اس نے کہا فلاں کون؟ تو شخص نے کہا فلاں میں ہوں اور میں آپ کا بیٹا ہوں. تو جو والد صاحب تھے اس نے اپنی گردن تھوڑی سی جھکائی اور سوچنے لگ گیا. تو اس نے کہا اچھا تو میرا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بیٹا ہوں, میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ والدین جو ایک وقت تھا کہ وہ اپنے جوانی کے اندر اپنے ذہن کے تیزی کی وجہ سے پورے علاقے کی بزنس چلاتے تھے, سوؤں کی تعداد لوگ ان کی بڑی زبردست دکان تھی, اس دکان کے اندر لوگ آتے جاتے, یہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے, سوؤں کا نام ان کو زبانی یاد تھا کہ تو اس کا بیٹا ہے, تو اس کی بیٹی ہے, تو اس کا باپ ہے, تو اس کی ماں ہے, ہر ایک کے ساتھ گپ شپ لگاتے. اب ایک وقت آیا کہ کمزوری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ اپنے خود بیٹے کو پہچان نہیں سکا. اب یہ حالت ہوئی کہ وہ خود اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکا, اور بیٹا کہتا ہے کہ ہر دن یا ہر دوسرے دن جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان کو بتلاتا ہوں کہ میں فلاں ہوں, میرا نام یہ ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ میرے باپ ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے گردن جھکا کر زمین کی طرف دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا تو میرا بیٹا ہے. اس نے کہا ہر دن, بلکہ دن میں کئی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح. تو خیر, کہنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے تو یہ ہمیں قرآن کے اندر بتلا دیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ ایسی کمزوری تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے, اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, اس کو یاد دہانی کرا جاتی ہے, تھوڑا سے کچھ چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جب انسان اس صورت کے اندر جب ہو تو اولاد اس کو یہ کہے کہ بھائی میں اب آپ کو ہوم کے اندر چھوڑ دوں, وہاں جو سٹاف ہے وہ آپ کا لک آفٹر کرتا رہے, وہ آپ کو کھانا دے, آپ کو پینے کے لیے کچھ دے دے, دوائیوں کی ضرورت ہو وہ آپ کو دے دیں, آپ کے کپڑے وہ آپ کے بدلائیں, وہ دھو کر استری کر کے پھر آپ کو دوسرے دن پہنائیں, آپ کو غسل کی ضرورت ہو وہ سٹاف جو ہیں, جو نرسز ہیں, جو کیئر ورکرز, سوشل ورکرز جو بھی ہوں وہ آپ کا یہ تمام کام کرے, حتیٰ کہ جب آپ کو ٹوائلٹ جانا ہو اپنی ضروریات کے لیے وہ آپ کے ساتھ جائے, اس بوڑھے کے ساتھ, بوڑھی کے ساتھ جائے اور جا کر ان کے پیشاب کو, پاخانے کو صاف کرے, اگر ان سے کوئی الٹی ہو جائے اس الٹی کو صاف کرے. یہی دو بوڑھے تھے, بوڑھیاں, جو کل جب آپ بچے تھے تو یہ آپ کا دیکھ بھال کرتے, آپ گندگی کرتے اسی وقت وہ ماں آپ کی صفا کرتی, وہ باپ آپ کا دیکھ بھال کرتا, آپ گر جاتے وہ آپ کو اٹھاتے, اپنے گلے کے ساتھ لگاتے, اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کر آپ کے ہاتھ کو اگر چوٹ لگی ہے اس کو چومتے, اس کو دباتے, آپ کے گھٹنوں کو, آپ کے پاؤں کو دیکھتے, آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے کہ بیٹا جو ہے, بیٹی جو ہے وہ گر گئے ہیں, دے فالن ڈاؤن, مائی سن, مائی ڈاٹر ہیز فالن ڈاؤن. دیز آر دا سیم پیرنٹس اور دا ایلڈرلی ہو وین یو واز یونگ, وین دا یونگسٹرز ور یونگ اینڈ دے ور ان نیڈ آف ہیلپ, سپورٹ,
assistance, emotional time. यंगस्टर जो होते हैं उनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बड़ी ज़रूरत होती है, उनका दिल घबरा जाता है, छोटी सी चीज़ देखते हैं रोना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है गिर जाते हैं रोना शुरू हो जाते हैं, तकलीफ़ का इजहार करते हैं, पेट के अंदर खाना थोड़ा देर से आए भूख लगती है रोना शुरू कर देते हैं, चाहे बच्चे हों थोड़े से बड़े हों। इतनी बात है बड़े जो हैं वो रोते नहीं बल्कि ज़बान से कह देते हैं, आवाज़ देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये वालिदैन आपके कपड़े जो हैं गंदे होते मैले होते आपको से उतरवा कर उनको धोते उनको इस्त्री करते उनको फोल्ड करके रख देते, दे वुड फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम अवे, लुक आफ्टर यू व्हेन यू वाज यंग टू गिव यू अ बाथ टू हेल्प यू अलोंग विद इट, व्हेन यू वाज ओल्डर टॉट यू हाउ टू क्लीन योरसेल्फ, व्हेन यू आर इल they will make sure they get the doctors, the physicians, the medical staff to look after you, any medication, they will make sure that it is provided to you and it is placed in front of you as soon as possible. Jitna jaldi ho sake wo aapko dawai dete. Kitni martaba raat ko aap सो जाते हैं वो आपके ऊपर चेक करते हैं कि बेटा या बेटी सोए हुए हैं या नहीं, क्योंकि दिन के दौरान तो बीमार थे। Has my son or daughter or my niece or nephew gone to sleep or not? Are they having a peaceful sleep or not? Because during the day, he or she were ill. And because of that, it could be that they're missing out on the sleep. And until you have not gone to sleep and you are comfortable, they will keep visiting you. At night, they are prepared to sacrifice their sleep at night just so that you can sleep comfortably. वो अपने नींद को कुर्बान कर देंगे, हर थोड़ी देर के बाद आपके पास आएंगे सिर्फ इसी वजह से ताकि आपको नींद आराम के साथ सुकून के साथ आए, आपकी रात सुकून के साथ गुजरे। तो आपके सुकून के लिए, आपके सुकून के लिए वो अपने नींद कुर्बान करते, अपने दिन का काम कुर्बान कर देते, अपना खाना पीना कुर्बान कर देते। वो एक मर्तबा एक वालिद अपने बेटे के साथ वहां बैठा हुआ था और वालिद ने बेटे को एक सबक सिखाने के लिए बुढ़ापे को पहुंच गए थे, लेकिन सख्त बुढ़ापा नहीं था। उसने बेटे को कहा कि बेटा वो दरख्त के ऊपर क्या चीज है, तो बेटे ने जवाब दिया कि अबू वो एक परिंदा है। थोड़ी देर के बाद फिर उस बेटे को पूछा, बेटा वो दरख्त की टहनी के ऊपर क्या चीज है, तो बेटे ने कहा अबू अभी तो मैंने आपको बताया वो एक परिंदा है। This father, he was sitting next to his son and he wanted to teach him a little lesson, help him understand the reality of life. So he said to him, my son, what's that in the tree on the branch? And the son replied, father, that's a small bird. And the father went quiet. Not so long passed and the father turned towards the son and pointed towards this tree saying, son, what's that thing on the branch over there? And the son turned around and said, father, I've just told you. You've asked me and I replied, that's a bird. तो तीसरी मर्तबा फिर बाप ने पूछा थोड़ी देर गुजरने के बाद कि बेटा वो दरख्त के ऊपर क्या चीज है, तो अब इनको बड़ी कोफ्त हुई। He became very annoyed when he asked him the third time, what is on that tree on the branch? तो उसने गुस्से के अंदर कहा कि बेटा वो क्या चीज़। तो बेटे ने जवाब दिया गुस्से के अंदर कि अब्बू अभी तो दो मर्तबा मैंने आपको बतला दिया है कि वो एक परिंदा है, आप बार बार क्यों पूछते हैं, इतने जल्दी भूल जाते हैं। The son turned round and he became annoyed and angry with his father and said, father, you've asked me twice before and this is your third time.
and I keep telling you it's a bird that's on the branch. Why are you annoying me? Why can't you remember? And he became very upset. But ghusse hue wo bacha, wo youngster jo hai. To us waqt wale sahab ne uski taraf tawajjuh di. Youngsters to nahi the, 30-40 saal ke darmiyan unki umar thi. He was about 30-40 between that. At that time, the father turned towards his son aur farmane lage ki beta, main aapko ye jo sawal pooch raha tha na, mujhe bhi pata hai ki wo parinda hai. Teen martaba maine aapko poocha aur aap itna gusse ho gayi ki aapne mere upar gusse ka izhar bhi kar diya. Ye wahi jagah thi, wahi darakht tha कि आप बचपन के अंदर थे और आप मुझे थोड़ी देर के बाद मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखते और कहते, अब्बू वो क्या चीज है? और मैं प्यार से आपके हाथ को चूमता और कहता, बेटा वो एक परिंदा है. आप इधर उधर थोड़ी देर देखते हैं, फिर मेरे हाथ की अपना हाथ मेरे मुंह के ऊपर लगाते और कहते, अब्बू वो क्या चीज है? इसी जगह के ऊपर तुमने 11 दफा मुझे पूछा और हर दफा मैंने आपका हाथ चूमते हुए आपको कहा, बेटा वो एक परिंदा है. और अब मैं आपको कहता हूं कि 11 के बजाय अगर आप 100 मर्तबा भी मुझे पूछते तो हर मर्तबा मैं आपका हाथ चूमकर आपको कहता कि बेटा वो एक परिंदा है. यू आस्क्ड मी इन दिस सेम प्लेस व्हेन यू वाज अ यंग बेबी 11 टाइम्स दैट फादर व्हाट इज दैट. You'd place your hand upon my face, up towards my mouth, and I would take your hand, kiss it, to give you encouragement, to show affection to you, and say to you, son, that is a small bird in a tree. You asked me again, you asked 11 times, and let me tell you today, had you asked me 100 times, I would have replied with the same love and affection and with respect, kissing your hand every time. But alas, today, when I have become weak and you have become strong, you've forgotten how you was treated, hence how you should treat me. आज जब मैं कमजोर हो गया हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ, तुम भूल गए हो कि कैसे हमने आपकी तरबियत की थी और आपके साथ किस तरह बेहतरीन अंदाज में प्यार से बर्ताव किया था. तुम वो भूल गए, इसलिए मेरे साथ ये सख्ती वाला मामला कर रहे हो. बेटा फौरन समझ गया, समझदार बेटा था. उसने कहा, अब्बू जान मुझे माफ कर दो, आज आपने मुझे वो सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी अकेला अगर मैं रहता तो वो सबक न सीख सकता. टुडे यू हैव टॉट मी अ लेसन ओ फादर दैट हैड आई ट्राइड ऑन माय ओन आई वुड नेवर नेवर हैव लर्न दिस लेसन. तो कहने का मकसद, ये हमारे जो बुजुर्ग, चाहे मर्द हों, औरतें हों, बूढ़े हों, बूढ़ियां हों, जो कमज़ोर तबका है, चाहे वो बीमार हों, डिसेबल्ड हों, अपाहज हों, दोज हुआ इल, दोज हुआ डिसेबल्ड, दोज हुआ जनरली वीक और वीक ड्यू टू एल्डरली एज, हाउ इज आवर character towards them? Is it accommodating, making them feel comfortable, making them feel appreciated and valued? Because that's what the elderly, they feel and they want. They want to be valued in society and not sidelined. जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उन वो चाहते हैं कि हमारी कदर की जाए, हमारी कीमत का इजहार किया जाए. पूरी जिंदगी उन्होंने कम्युनिटी के अंदर, महल्ले के अंदर, इलाके के अंदर अपनी मेहनत की, कुर्बानियां दी महल्ले को, इलाके को बेहतर बनाने के लिए. और आज जब उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनकी कदर न करना ये सख्त बेकदरी है. टू बी अनअप्रीशिएटिव ऑफ दोज एल्डरली इन रियलिटी इज़ बीइंग अनग्रेटफुल.
because most of their life they have contributed to our society to make it better. Now when they are vulnerable, it would be so unfortunate if they are sidelined. इसी वजह से मैं ये कहा करता हूँ कि भाई अब अगले next steps what can we do? भाई जब भी आपके अहम मौके हों, whenever you have important events or important gatherings, always include the elderly in there, even if they have no say in there, even if they have no contribution in there, even if they are not physically involved in there. So the weddings, for example, they cannot be giving out things, distributing things, they cannot be walking around. But if you were to place them on a high place, on the stage, or a valuable area, and people come and give them salam, speak to them, talk to them, they feel valued and appreciated. Wo unko mahsoos hota hai ki in logon ne hamari qadr ki, aur wo ek din ke andar unki jitni qadr hoti hai, kai kai hafton tak unko uska ehsaas baki rehta hai, that one day they had been valued and appreciated and respected and given the extra respect, that one day they remember it for many, many, many weeks and days. Similarly, not only on the weddings and the happy occasions, but also on sad occasions, involve them, bring them, talk to them. कहीं कोई फौत की हो गई तो उन बड़े बूढ़ों को भी उधर लेकर आना, ताकि वो हमें सिखाएं कि ऐसे मौकों के ऊपर क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए. So they can teach us what we are to do in these difficult times. Sometimes they have ideas through their experiences that the youngsters throughout their life would never have thought of. बाज़ औक़ात उनके पास ऐसे मशवरे होते हैं कि अगर ये यंगस्टर पूरी ज़िंदगी उसके बारे में सोच और विचार करते रहे तो उनको ये आइडियाज़ और ये मशवरे उनको महसूस न होते. तीसरी चीज़ तो ख़ुशी के मौके के ऊपर उनको इन्वॉल्व करना और उनको अप्रीशिएट करना. दूसरी बात, गमी के मौक़ों के ऊपर उनको इन्वॉल्व करना, उनसे मशवरे करना. Third thing is visit them as much as you can and sit with them for a short while. Jitna ho sake, hamare jo bade boodhe hain, elderly of the society, let's see if you can visit them. Spend some time with them. Even if you don't have much to say, just by sitting near them will make them feel happy that we have got somebody sitting next to me. उनको महसूस होगा और खुशी होगी कि हमारे पास कोई बैठा हुआ है. मैंने वो वाकया बतलाया था पिछले सेशन के अंदर कि एक बीमार के पास मैं जब गया अस्पताल में, तो वहाँ एल्डरली केयर होम में, तो वहाँ उनके बेड के साथ एक दूसरे भी थे. मेरी आदत है कि जब देखता हूँ तो 5-10 मिनट दूसरों के पास भी बैठ जाता हूँ. कोई पता नहीं कि किसका दिल खुश हो जाए, उसके दिल से दुआ निकल जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बात पसंद आ जाए. और दूसरी बात, ये हमारे दीन का हिस्सा है कि हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना. दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर फेथ, आवर दीन, दैट वी शो गुड मैनर्स, गुड कैरेक्टर. Be respectful to everybody, regardless of which faith, which religion, which background, which language, which ability, disability. None of those things matter. Color of the skin, language, none of those things matter. We are all human beings. We are all the children of Adam. And therefore, everybody should be respected, cared for. तो खैर, कहने का मकसद कि उनके पास जब मैं गया तो वो इतने खुश हुए, और दरमियान में बातों के अंदर उसने ये बात बतलाई कि मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि मेरे इधर कई कई महीने हो गए. I've been here for quite some time, many, many months. But other than the paid staff, यहाँ जो स्टाफ है, चाहे वो नर्सेज हैं, क्लीनर्स हैं, क्लिनिशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कुछ भी, उनके अलावा
वॉलंटियर तौर पर मेरे पास पिछले कई कई महीनों के अंदर कोई आदमी आकर मेरे पास बैठा नहीं है। एंड आई एम क्रेविंग, मुझे इसकी बड़ा एहसास होता है कि मेरे पास कोई आए, बैठे, मुझसे बातचीत करे। तो इसलिए यंगस्टरों को मैं ज़रूर कहूँगा, और यंगस्टरों का मतलब जिसको भी अल्लाह ने ताकत दी हुई है, चाहे वो बड़े बूढ़े आपके वालिदैन हों या आपके वालिदैन न हों, आपके दादा दादी नाना नानी हों या कोई और हो, इफ दे आर एल्डरली, वक्तन फवक्तन, as often as you can, whenever you get a chance, or try and make a chance that you can go to those people, sit with them, even if it's for 10-15 minutes. Those 10-15 minutes will be a great time of comfort for those people. Unke liye bade hi sukoon ka time hota hai. Ki hamare paas koi aaye, baithe, aur hamare saath waqt guzara. Sometimes you don't need to say much. Youngster, aam taur par main jab unko in cheezon ki targhib deta hoon, when I give them encouragement that you must visit the elders, go to the elderly care home, go to the hospitals and visit those people, speak to them, to aam taur par youngster mujhe kehte hain ki mujhe pata nahi ki unse kya cheez karu, baat jis kis mauzu par baat karu, what can we speak about, what can we talk about. To main unko aam taur par kehta hu, aur ye main isliye keh raha hu taaki aap logon ke zehen ke andar baat aa jaye ki unke bare mein poocho. Speak and ask them about their life. They love to tell people about their young age, about their times in life, the good times, the bad times, the hard times, the difficult times, the problematic times. Wo chahte hain ki hum kisi se baat cheet kare aur apne khushi ke waqt, apne ghami ke waqt, apne upar jo sakht halaat aaye the wo waqt kisi ke sath share kare. So all you need to speak to them and say, uncle or auntie, at my age, what were you doing? How was your schooling? Or how was your work? Or what kind of jobs were there in your days? Nowadays we have the computers. There weren't those sort of things in your days. How were they? What kind of jobs were there? Tell me something about your friends, about your family. Tell me a story about when you was young. Aap jab chote the, uske bare mein hame kuch story batla do. And they will happily tell you. I can remember I visited this elderly person on a number of occasions. And one occasion, they told me that this certain piece of land, we wanted to buy it. And the person next door bought it. And we said that this, we had the right, and then my father became involved. That person's telling me this story. And then he's saying that his uncles and his nephews and all those people became involved, and then there was a huge big argument. And cut the story short, he told me this whole story of what happened and how then the dilemma was solved. Wo mujhe batla rahe the ki hamari ek badi zameen thi. तो मेरे दोस्त उधर बैठे हुए थे, ज़मीन थी और इस तरह हम उसको ख़रीदना चाहते थे, उसके साथ वाली जो ज़मीन और उसके ऊपर शफा हुआ था, और जो साथ वाले लोग थे वो भी आ गए थे, और मेरे वाले साहब भी, मेरे चाचा भी आए थे, और मेरे जो भांजे भतीजे वो भी, हम पूरे फैमिली उधर थे, और इस तरह पूरा मसला बन गया था, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। तो उसने मुझे पूरा किस्सा बतलाया और फिर कैसे वो सुलह हुआ और दरमियान में जिरगा हुआ। ही टोल्ड मी द स्टोरी and I listened and I listened, and when we came out, wahan se jab hum nikle, to one of my close friends who was with me, he said, I'm sure he's told you this story before, have you forgotten? Mere dost jo mere sath gaye hue the, to usne kaha mujhe yaad hai ki is bade boole ne hame ye kissa pehle bhi kissa batlaya tha. To maine uski taraf dekh kar kaha, bilkul batlaya tha. तो फिर उसने मुझे कहा कि आप तो ऐसे सुन रहे थे और उसको सवालात पूछ रहे थे, फिर क्या हुआ, और फिर इसके बाद क्या हुआ, गोया कि आपने सुना ही नहीं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये किस्सा मैंने उससे 6-7 मरतबा सुन चुका हूँ। आई हैव लिसन टू दिस स्टोरी 6-7 टाइम्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स।
But every time I listen to him, and he's proud to tell me about the story because it was a major story, major event in his life, I act as though it's the first time he's telling me, and I begin to question parts just to let him feel that it's the first time he's telling me, and he's more enthusiastic to tell me. कभी आप इस तरह कर लिया करो, ऐसे करते हैं। ब्रेक का वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ, बातें आगे बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल गो टूवर्ड्स ब्रेक, और उसके बाद अगर आप भी आना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू मैंशन समथिंग ऑफ हाउ वी कैन respect our elderly, look after them, any tips of how we can show value and appreciation to them, agar aap bhi on air aana chahte hain aur batlana chahte hain ki hum apne elderly, apne buzurg, apne jo bimar tabka hai, jo kamzor tabka hai, unki dekhbhal kis tarah kar sakte hain aur unki qadar kis tarah kar sakte hain taaki unko mehsoos ho ke ye jo youngster hain ye hamari कदर करते हैं, हमें वैल्यू करते हैं। अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो ये मोस्ट वेलकम ऑन एयर। अगर आपके पास कोई वाकयात हैं कि आपने किस तरह किसी बड़े बूढ़े या बूढ़ी के साथ वक्त गुजारा है, और अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात और आप उनमें से बड़े बूढ़ों में से हैं, तो आप हमें बतलाएं कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है कि जो आपके पास आपके यंगस्टर आकर आपसे करते हैं तो आपको वो बड़ी पसंद होती है, आप उससे बड़ा खुश होते हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास यंगस्टर आते हैं और ये काम करते हैं, क्योंकि आपके ये कहने से हमारे हज़ारों जो लिसनर्स हैं उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक दूसरे की हेल्प करके, ताकि जो हमारे सोसाइटी की कम ये कीमती तबका है और कमज़ोर तबका है, उनकी हम कदर कर सके और उनको कंफर्टेबल और खुशियाँ दे सके। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाता हूँ। मैं हूँ आपसे मुखातब आपका मेहसबान मौलाना फजलदाद, और ये है हमारे सनराइज़ रेडियो 103.2 FM, 100.6 FM, हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक UK टाइम के अंदर हम लाइव हुआ करते हैं। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।

0: खलिया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद। और ऐसे करते हैं कुछ लाइंस के ऊपर साथी आए हुए हैं,
1: उनकी
0: उनकी उनकी कॉल ले लेते हैं। तो जाते हैं पहली कॉल की तरफ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। आपकी लाइन ड्रॉप, आपने सलाम दिया फिर उसके बाद आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। अगर आप वापस आना चाहते हैं अमरेश साहब तो ये मोस्ट वेलकम। ऐसे करते हैं अगली कॉल की तरफ जाते हैं इन द मीन टाइम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साहब, इट्स ब्रदर जाकिर स्पीकिंग।
0: ब्रदर जाकिर, हाउ आर यू?
2: नॉट टू बैड। इट्स बीन अबाउट 3 मंथ्स सिंस आई लिसन टू योर प्रोग्राम।
0: जी,
2: आई बीन वेरी वेरी अनवेल, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू ट्यून इन।
0: जी जी, व्हाट्स हैपेंड टू यू?
2: I was having very, very high blood sugar, and I kept going to the blood test, to the surgery, and eventually they diagnosed me with type 1 diabetes.
0: Mm-hmm.
2: And it's very, very bad now, because I've been having insulin jabs every morning since the 26th of June.
0: Mm-hmm.
2: And it will be having to be like that for a long time now. And I just wish you to pray for me. And I've had a few brothers from the masjid saying to me, like, get yourself checked out, it could be Nazir-e-Bab.
0: Mm-hmm.
2: Because of a sudden loss of weight. I lost 13 kilograms in just a few months before Ramadan. I was 73 and then I became 60 kilograms now.
0: Mm-hmm.
2: And sudden loss of weight, it could be Nazir-e-Bab. So I need to one or two people. Somebody suggested to me to go to Al Hikam in the Bullroyd Road.
0: Gee.
2: And possibly get it checked out, because it could be Nazir-e-Bab. Because there's sudden loss. I'm losing a lot of hair as well on the head. Every time I'm having a shower, I'm losing so much hair now. There's patches in my head, and I'm scared to have my hair shaved, because there'll be patches and they're looking funny. And so I just wish you to do the work for me.
0: Definitely.
2: And I'm feeling very unwell, and I, like I say, I don't like this insulin jabs every single day. I'm having my fingers pricked, and testing my blood, and this is just a sudden onset of this illness.
0: And what have the doctors said?
2: They said that it's high blood sugar. That's why it's happening, the weight loss, and that they basically they're saying that after the insulin it should be coming back, the weight.
0: Inshallah.
2: But, Inshallah. But at the moment nothing's changed, and I just have to have these every morning. These jabs is very inconvenient. I don't like it, and I just wish that I could turn the time back and become well again. And you don't realize how much good that it is. You know, people are healthy, they don't appreciate the health.
0: Sahi. And the good. Very true. Okay, health, when a person has health, the person naturally, we don't appreciate it, we don't even think of it. In fact, it doesn't even come to people's attention. And only when we lose certain parts of our health, those people will feel and understand how valuable that is. Gee, you're 100% right. Or our du'as are with you, Bhai Zakir. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you and all the rest of the ill people, may Allah grant them shifa'i kamila ajila mustamirra. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep you and everybody else away from all kinds of evils, corruptions and calamities. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant you a fast recovery, inshallah. So keep doing what the doctors are saying to you, because they're the experts in these fields. And do visit them as often as you can and listen to their advice, inshallah. Take inshallah.
2: Yeah.
0: And JazakAllah khair for tuning in. And yes, if it's been a long time, then you need to keep tuning in every Friday. You know, our program, it's every Friday evenings between 8 till 9, since many, many years, almost 25, 26 years now, maybe more. So please do tune in, and it's always good to hear from you, and keep us updated about your health, inshallah. Take it. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Ji, ye the bhai Zakir, batla rahe the ke kafi bimar huye. और डॉक्टर्स के पास भी गए, वेट भी काफ़ी लॉस उनका हुआ। तो और उनकी बात बहुत अहम कि उन्होंने कहा कि जब इंसान के पास सेहत होती है, मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इंग्लिश के अंदर बाज़ लोग को उनका पैगाम नहीं पहुँचा होगा, कि इंसान के पास जब सेहत होती है तो उस वक़्त इंसान को उस सेहत की तरफ तवज्जो नहीं होती, कदर ही नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस नेमत को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और सेहत चली जाती है, बीमारी उस शख्स के ऊपर आती है, तो फिर इंसान को उसकी बहुत सख्त कदर होती है कि इस जैसी कोई और नेमत थी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी हमें भी सब कुछ शिफा नसीब फरमावे और सेहत वाली जो नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी कदर हमें नसीब फरमाए। बल्कि हदीस पाक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि नेमतान मखबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सेहत वल फराग। दो बड़ी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी हैं कि उनके अंदर अक्सर लोग खसारे के अंदर हैं। मखबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन्नास, अक्सर लोग, बहुत सारे लोग जो हैं खसारे के अंदर हैं, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, उनकी कदर इंसान को पता नहीं है। और फिर फरमाया वो दो नेमतें अस्सेह, इंसान की सेह, वल फराग, इंसान के पास जो फारिग वक़्त होता है। तो आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी तमाम नेमतों की कदर नसीब फरमावे। और वो जो दूसरे साथी आए थे स्क्रीन के ऊपर लिखा था फ्रॉम ज्यूसबरी, तो ये मोस्ट वेलकम, सॉरी आप ऑन एयर थे जब मैं आपको ऑन एयर कर लेकर गया तो फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, यू मोस्ट वेलकम टू कम बैक अगेन, अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो हमारे एल्डरली हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं सोसाइटी के अंदर, उनका देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम कमज़ोर थे तो उस वक़्त उन्होंने हमारी देखभाल की, और जिस वक़्त वो कमज़ोर हों तो उस वक़्त हम उनकी देखभाल करें। इससे एक दूसरा मौजू जो आज नहीं क्योंकि वक़्त मुख्तसर है, लेकिन अभी इशारा कर देता हूँ, वो ये है कि हमारी जो नस्ल है, हमारे जो हम उम्र है, हमें तो उसकी किसी हद तक हमारी तवज्जो है कि बड़े बूढ़ों का लुक आफ्टर करना है, लेकिन इसके बाद वाले जो यंगस्टर हैं आजकल, जो यंगस्टर्स हैं जो अपनी टीन्स के अंदर, टीन्स का मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये आया, जब ये बड़े होंगे 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, जो अभी 19 है तो 10 साल के बाद 29, 20 साल के बाद जो आज 19 है 20 साल के बाद वो 39 होगा 40, तो इन लोगों की आया हमने सही तरबियत की है? ये नहीं कि वो बड़ों के साथ ताल्लुक इस तरह रखें कि कल अगर बड़े बीमार हो जाएं तो ये उनकी देखभाल करेंगे, या नहीं? हाउ वी नर्चर द यंगस्टर्स एंड स्पेशली दोज इन द टीन्स और मे बी इवन स्लाइटली ओवर, how we nurture them in such a way that tomorrow when we are the elderly and we are frail, weak, kamzor ho hum bade boodhe ho bimari ki halat mein ho to aya humne unki tarbiyat ki hai? Have we nurtured them in such a way that they will have this same connection, love, this affection, this sympathy, the empathy with the elderly? Will they have that or not? ये एक मुस्तकिल मौजू है। ऐसे करते हैं, कुछ और कॉल्स भी आई हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आगे बात चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जनाब, आई होप यू वेल। क्विक क्वेश्चन, आई ओवरसी ए डेथ कमिटी एंड इन दैट वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, डू वी हैव टू पे ज़कात ऑन दैट मनी?
0: Good question, and a quick answer is no, you don't have to pay zakat on that. That's not your money anymore, that's a joint pot. Lekin, what's your name, by the way? I haven't asked your name.
1: Ishaq.
0: Pardon?
1: Muhammad Ishaq.
0: Muhammad Ishaq. Muhammad Ishaq. Theek hai sir, Muhammad Ishaq sahab?
1: Okay
0: ji, assalamu alaikum. To akhiri baat main isliye zara mukhtasar kar raha hoon ke I want you to think about this, because this is a very important point and I want to bring it towards the end, and then next session inshallah I'm going to be talking about whether we have nurtured our young for this stage in life which they are going to face. ye jo marhala zindagi ka jo unke samne aayega, ye har shakhs ke samne aata hai. कौन सा मरहला? ये मरहला कि जब ये यंगस्टर बड़े होंगे और उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो बूढ़े हैं या उनके जो बुज़ुर्ग हैं इलाके के अंदर, वो इतने कमज़ोर हों तो आया हमने उनको तरबियती तौर पर इस तरह तैयार किया है कि वो उनका लुकाफ्तर करेंगे, या हमने उनकी तरबियत नहीं की या तवज्जो नहीं की और उसका नतीजा ये निकले कि वो उन सबको कहेंगे इनको होम के अंदर डाल दो, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। हैव वी नर्चर देम, हेल्प देम अंडरस्टैंड अबाउट दिस फेज ऑफ लाइफ दैट दे गोइंग टू फेस, वेयर दे विल have the elderly of their family, of their extended family, of their area, and then they will be in a decision that do we look after them and we have this connection with the elderly, or is it that they say we have no connection with them, we are a selfish people who will only look after our personal interests and therefore send them straight to the home and we don't want to look after them. आया हमने इस तरफ तवज्जो दी है या नहीं? अगर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं दी है अभी भी वक्त है, तो वो कौन से काम हैं, आमाल हैं जो हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम इन यंगस्टरों के अंदर वो स्किल, वो प्यार, वो हमदर्दी उनके अंदर डाल सकते हैं अभी से, ताकि वक्त के साथ एक वक्त जब आवे तो उस मरहले के लिए वो तैयार हों। ऐसा करते हैं, आज के सेशन को इसी के ऊपर ख़त्म कर लेते हैं, और आखिर में जैसे मैं याद कराया करता हूँ कि भाई दुनिया के अंदर अभी तक बास ममालिक के अंदर जुल्म हो रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो दीगर ममालिक के अंदर हो। ये अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया फ़िलहाल खामोश होकर आपकी तवज्जो वहाँ से हटा रहा है, दूसरे कहीं झगड़े की तरफ या इलेक्शन की तरफ या फला केस की तरफ, ताकि आपकी तवज्जो वहाँ से हट जाए। लेकिन याद रखना कि अभी तक वहाँ और दीगर ममालिक के अंदर भी बड़े अंदाज के अंदर जुल्म हो रहा है। There's a lot of cruelty still going around in many countries around the world, even though some of the mainstream media are not bringing our attention to these topics. ऐसे करते हैं, एक कॉल और आई हुई है, कॉल ले लेते हैं और फिर आपकी नहीं, ऐसा करते हैं इनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम, एक आध मिनट बाकी है, आप आ सकते हैं। तो आपकी तवज्जो इस बात की तरफ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस साइड एज वेल, दैट देर आर स्टिल कॉन्फ्लिक्ट्स and cruelty and torture going on around the world, and to bring it to our attention is very important. Aisa karte hain, inki call le lete hain ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam Maulana sahab, ki hal theek hai?
0: Alhamdulillah, Allah ko shukr hai.
3: Achi Maulana sahab, ek question hai death committee ke bare mein. जैसे कोई फोत हो जाता है, ऐलान किया जाता है इसके ऊपर कोई कर्ज है तो बता दें, ये डेथ कमेटी जो लोग डालते हैं, ऐसा होता है अगर किसी का कॉस्ट 4,000 pound हो और उसमें
0: ऐसे करें भाई, देखो वक्त बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, तो अगले फ्राइडे आप इसी क्वेश्चन को तफसील से क्वेश्चन भी करना और इंशाल्लाह इसका फिर तफसील से मैं जवाब भी दूंगा, क्यों अभी मुनासिब नहीं है, मैं आपका पूरा सवाल भी सुन नहीं सकूंगा और फिर जवाब तो दे ही नहीं सकूंगा क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। ठीक है, इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है जी?
3: मोहम्मद खलील
0: खलील साहब, ठीक है, ओके जी खलील साहब, इंशाल्लाह आप नाराज़ ना होना, ठीक है, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम होता है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप ज़रूर आए इंशाल्लाह। ये थे भाई मोहम्मद खलील साहब, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपका इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ आपके इस सेशन को दुआ के साथ ख़त्म कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। या रब्बिल आलमीन, तू हम सबको दीन की सच्ची और सही समझ नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, जितने भी परेशान हाल हैं जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं, या अल्लाह सब की परेशानियों को तू दूर फरमा। या अल्लाह तू हम सब को एक और नेक बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक हमीदा तू हम सब को नसीब फरमा। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश तू हम सब को नसीब फरमा। या अल्लाह तेरा तकवा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हम सब को नसीब फरमा, इत्तेबा हम सब को नसीब फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम खैर की दुआओं के अंदर तू हम सब को हिस्सा नसीब फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है उन तमाम चीज़ों से हिफाजत और पनाह हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। मौत के बाद जितने भी मराहिल हैं उनके लिए भी, हमारे लिए भी, बाकी उम्मत के लिए आसान फरमा। और हमारी जब मौत का वक़्त आवे तो या अल्लाह तू हम सब को कलमा ईमान और ईमान वाली मौत, शहादत वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआ का कहा है या लिखा है, बहुत सारे लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, जिन्होंने कहा है या लिखा है या उनको तवक्कु है, या अल्लाह उनकी तमाम जो जायज़ हाजात मसलहत के मुवाफिक हो और जिसमें तेरी रजामंदी हो, या अल्लाह उन तमाम को तू उनकी हाजात को पूरा फरमा। और जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, जिस अंदाज के अंदर भी हो रहा है, या अल्लाह तमाम मजलूमीन की तू मदद फरमा और जालिमीन को सही समझ दे दे ताकि वो जुल्म करने से रुक जाए। या अल्लाह सबसे बड़ी बात वो तेरी रजामंदी है दुनिया और आखिरत के अंदर, तू हम सब को अपनी रजामंदी नसीब फरमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين। मैं हूँ आपसे मुखातब आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद और हमारा ये प्रोग्राम आलिम ऑन एयर एवरी फ्राइडे इवनिंग्स बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock यूके टाइम हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है। इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। दरमियान में मैंने अर्ज़ तो किया था कि मैं स्टूडियो का नंबर अर्ज़ करूंगा, लेकिन तकरीर जारी थी। हमारे स्टूडियो का नंबर 01274306666। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
4: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.

0: Hey, son. Plan. Plan एक घड़ी है, स्विस वॉच। वॉच के पुर्जे यानी हम परफेक्ट, तो घड़ी भी परफेक्ट। टिक टॉक टिक टॉक, वरना वही वॉच चला बम बन के हम सबको बम। समझे क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, प्लान एक बार और। प्लान
1: पक गया, थक गया, तू जो भी बोला मेरे सर में अटक गया भाई।

0: मैं कहा सोने हो की गल हो गई ओए अज मेरी जान दे मुख तो लाली उड़ी पई है
1: सोने हुण अपना प्यार सारिया दी अख विच रड़कदा है मैनू तो यही डर खा रहा है किते साडे विच कोई विछोड़ा ना पा देवे
0: ओए तू चिंता ना कर जदों कुंडियां दे सिंग फसे ए लल्ली